ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, खुदा खुद ढूंढ के देता है वो शख्स जो दिल को सुकून दे। हाय, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आप किसी को पसंद करें, उन्हें चाहें, उनके लिए जो चाहें आप करें, प्यार करना बहुत आसान होता है। दिल का किसी को पसंद करना, बस कोई दिल में यूँ घर कर जाए, उनकी बातें, उनके बारे में हमेशा सोच सकते हैं हम लोग। हमें किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी का रुतबा अच्छा लगता है, किसी का बस पास रहना, अच्छा महसूस करना हमें अच्छा लगता है कि वो बस हमारे आस पास रहें तो दिल खुश रहता है। जैसे उनके साथ रहने से वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, कट जाता है। आप किसी को प्यार करें, प्यार करना एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत आम बात है। कहते हैं लोग कि बड़ी ख़ास बात है, लेकिन मुझे लगता है बहुत आम बात है। दिल किसी को भी चाह सकता है, लेकिन उस दिल को कोई प्यार करे, यानी कि आप किसी को प्यार कर सकते हैं लेकिन आपको कोई प्यार करे, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार करना आसान है, लेकिन कोई आपको प्यार करे उतनी ही शिद्दत से, ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे ऐसे लगता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि आप किसी से प्यार करवा नहीं सकते अपने आप को। यू कांट मेक समवन फॉल इन लव विद यू। और होता ऐसा है कि ये बात समझते समझते हमें बहुत टाइम लग जाता है कि हम किसी से प्यार नहीं करवा सकते अपने लिए, राइट? ये करते करते काफ़ी जब देर हो जाती है तब हमें बात समझ में आती है। दिल यही चाहता है कि कोई हमारे दिल का हाल पूछे, हमारा दिन कैसा बीता था ये पूछे, कुछ प्लान करे हमारे लिए। कोई तो दुनिया जहान में एक ऐसा शख्स हो जिसे हमारी परवाह हो और जिसके लिए जो हमारे ये आंसू हैं ये मोती की तरह हों, और चाहते हैं कि ऐसा कोई हो इंसान जो दुनिया में हमारे लिए लड़ जाए, हमसे भिड़ जाए दुनिया में किसी से भी हमारे लिए। लेकिन असलियत यह है कि ऐसे कुछ होता नहीं है, ये सब मिलता नहीं है, राइट? और हम किसी को पसंद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें पसंद करे और जिस इंसान को हम पसंद कर रहे हैं वही इंसान हमें पसंद करे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और भी बात है कि जब हम किसी के साथ प्यार कर रहे होते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करें, और इन रिटर्न वी ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम। हमें ये लगता है कि हम जैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं और हम उनके साथ जैसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे साथ वैसे ही प्यार करना चाहिए, कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए। सौदा कह सकते हैं इसको, मोल तोल कह सकते हैं। लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम नहीं हम करते आजकल के ज़माने में, और हम वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अनकंडीशनल लव हम बोलते हैं लेकिन वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई रहती हैं, क्योंकि दिल के किसी कोने में हम चाहते हैं कि कोई और भी हमारा इंतज़ार करे, कोई हमसे भी बात करे, कोई हमारी परवाह करे, चिंता करे, पूछे कि तुम्हें क्या गम है, क्या परेशानी है, मसला क्या है, दिल के साथ चल क्या रहा है। कोई तो हो जो ये सोचे, ये जाने, ये पूछे कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम क्या चाहते हो। पर ये कोई नई बात मैंने बता नहीं रही हूँ आपको, ये बहुत पुरानी, सदियों की पुरानी समस्या है, प्रॉब्लम है। होता नहीं है ना ऐसा लाइफ में। वही बात घूम फिर के आ जाती है कि हम किसी से प्यार करें ये आसान है, लेकिन कोई हमसे प्यार करे ये होना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है कि ये आप करवा नहीं सकते हो जाता है खुद ब खुद। कोई करे प्यार तो ठीक है, करवा तो नहीं सकते ना, लेकिन दिल तो मानता नहीं। तभी तो कमबख्त इश्क है ना, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ बदलें, कुछ एडजस्टमेंट करें लाइफ में, और ये चाहते हैं कि अगर हम किसी के लिए एक पूरा का पूरा पुल है, ब्रिज है पार करना चाहते हो, तो कम से कम दो कदम तो वो बंदा भी आगे हमारे लिए ले ले। लेकिन तकलीफ होती है ना कि जब हम तो पूरा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं लेकिन अगला बंदा दो कदम भी नहीं ले रहा, तो तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, क्योंकि कोई सभी हम सभी

लोग ये चाहते हैं ना, दिल के किसी भी कोने में भले हम कुछ भी बोलें, चाहते तो हम यही है ना कि हमें प्यार मिले, कोई भी हमें चाहे, कोई हमें भी चाहे, राइट। दुनिया का, मैं जैसे कि बोला कि सबसे मुश्किल काम नहीं, नामुमकिन काम है कि किसी को अपने प्रति प्यार महसूस करवाना। हो ही नहीं सकता, आप कितनी लाख कोशिशें करवा लें, आप किसी को प्यार नहीं करवा सकते, आप किसी को प्यार में पढ़वा नहीं सकते। वो एक वो जिन की कहानी भी अगर याद है, तो जिन बोलता है कि मैं तुम्हारे सब जो इच्छाएं हैं वो पूरी करूंगा, लेकिन ये जो 3 इच्छाएं उसने बोली थी कि किसी को मार के जिंदा नहीं कर सकते और किसी के लिए मन में प्यार नहीं जगा सकते, और एक और कुछ और था, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप पसंद आ सकते हैं किसी को, आप किसी को पसंद करवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके बारे में लोगों को पसंद आ सकती हैं, लेकिन प्यार, प्यार बहुत मुश्किल है कि प्यार करवाना बहुत मुश्किल है। तो इसी बात पे आपको सुनाती हूँ, ये बहुत खूबसूरत सा गाना, ये मैंने प्रोग्राम बना रही थी तब मैंने ये गाना सुना, पहली बार सुना, बड़ी नई फिल्म का गाना है, दिस स्टक इन माई हेड, मैं कितनी बार ये सुन चुकी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ये गाना सुने और बताएं कैसा लगा।

तुम पे तो हम मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाना, मुझे लगता है कि मेरे आज के टॉपिक के लिए बहुत ही एप्ट गाना है ये, फ्रॉम द मूवी बोले चूड़ियाँ। और आगे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आज की, प्यार करना कितना आसान है लेकिन आप के प्रति, आपके तरफ किसी का प्यार होना और आपको प्यार मिलना कितना मुश्किल है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप किसी को प्यार करवा नहीं सकते हैं। और अगर हम देखें ऐसे लाइफ में तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप किसी का किस पसंद का सब कुछ करें जो जैसा अगला चाहता है आपको, बिल्कुल अगर आप वैसा बन जाते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए उनके मन में जगह बन जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा स्कैम है, ये ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर आपके खूबसूरत लगने पर और या फिर आपके बदल, अपने आप को बदल लेने की वजह से कोई आपको प्यार करने लगता है या आपको लगता है कि आपकी अहमियत बढ़ गई है थोड़ी ज़्यादा, तो अगर ऐसा है तो फिर अगर तो फिर दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, राइट, तो फिर उनकी ज़िंदगी में तो बहुत प्यार ही प्यार, बेशुमार प्यार ही भरा होता। पर ऐसे होता नहीं ना, क्योंकि खूबसूरती की वजह से लोग आपको नोटिस कर सकते हैं, वो आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, नोटिस जैसे कि मैंने बोला कि कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार प्यार नहीं हो सकता कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत आपने बना लिया, दूसरे की पसंद के हिसाब से बना लिया तो कोई आपको प्यार करने लगेगा, क्योंकि ब्यूटी अट्रैक्ट्स अटेंशन, अट्रैक्शन, ब्यूटी डजन अट्रैक्ट लव, प्यार नहीं मिलता खूबसूरती से। और अगर अपने आप को बदल लेने की वजह से हमें कुछ मिलता है तो वो अप्रिसिएशन मिल सकता है, लोग तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ ये आपने अच्छा किया, अपने बारे में अपना फिगर बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं वगैरह वगैरह, या कुछ आदतें आपने चेंज कर ली हैं तो नोटिस करेंगे लोग, तारीफ़ें हो जाएंगी, लेकिन क्या प्यार मिलेगा? और मैं ये बात कर रही हूँ सच्चे वाले प्यार की, ऐसे जो अफेयर्स होते रहते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, सच्चा वाला प्यार क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। और इससे तो बेहतर है कि ख़ुद को बदलना ही है, और किसी का प्यार पाने की वजह से या उसके लिए बदलना है तो उससे तो है कि आप बदलें और आप खुद से प्यार करें। सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव कहते हैं ना, कहते हैं कि किसी को प्यार करने से पहले खुद को प्यार करना सीखो। जब आप खुद की वैल्यू करोगे तो आपको प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेल्फ लव में क्या बुराई है? थोड़ा सा फिलोसफिकल है लेकिन अगर आप सोच के देखें तो मतलब आप किसी के लिए अपने आप को बदलो, नहीं इसलिए नहीं कि वो आपके प्यार में पड़ जाए या फिर उनका प्यार पाने के लिए, अगर खुद ब खुद प्यार में हो रहा है, अगर आप खुद ब खुद कुछ करना चाहते हैं अगले इंसान के लिए विलिंगली नेचुरली, अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप करें उनके लिए अपने पर्सनैलिटी से डिफरेंट हो के कुछ बदलाव है तो वो डिफरेंट है, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बदलना था क्योंकि प्यार मिले वो गलत है, वो प्यार की सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है। बात ये कर रही हूँ मैं कि कितना भी आप बदलें, कितने खूबसूरत हैं या क्या है चेंजेस लाएं, इन सब चीज़ों से प्यार नहीं होता। और अगर वो लगता भी है आपको कुछ कम समय के लिए कि प्यार हो गया तो वो बहुत ऐसे मोमेंटरली होता है, वो तो प्यार होता नहीं ना, जो ख़त्म हो जाए वो प्यार ही कैसा, राइट, वो प्यार तो हमेशा के लिए होता है। तो सोचिए इसके बारे में कि क्या बात मैं कर रही हूँ, और सुनिए ये दो बहुत ही खूबसूरत से गाने।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं आज हम कमबख्त इश्क के बारे में, प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे प्यार करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन किसी से प्यार करवाना नामुमकिन है। किसी का आपको प्यार करना कितना ही मुश्किल है, मगर हमने आसपास ऐसी अपनी बहुत सारी अमेजिंग लव स्टोरीज़ देखी हैं, बहुत सारी ऐसे मोहब्बतें देखी हैं। कितने लोग हैं हमारे आसपास जिनको बहुत प्यार हासिल हुआ है, प्यार मिला है, और हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार इसको प्यार कैसे मिल गया, इसको भी प्यार हो गया, राइट? तो दिल एकदम से ऐसे सोचने लगता है कि इसको कैसे मिल गया, और हम फिर ना वजह ढूंढने लगते हैं कि कारण ढूंढने लगते हैं कि क्यों मिला प्यार, क्या वजह क्या हो सकती है। हो सकता है कि जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि कोई बहुत खूबसूरत है, उसकी वजह से किसी को प्यार मिल गया होगा, किसी के पावर से किसी को प्यार मिल गया की वजह से किसी ने प्यार किया होगा, किसी के नाम की वजह से किसी ने प्यार किया होगा, या फिर कोई भी वजह हो सकती है किसी को प्यार करने की। लेकिन कुछ भी बोलो, चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, जब प्यार मिलता है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत खुशी मिलती है। और हम सभी चाहते हैं कि हम सभी प्यार के भूखे, हम सभी चाहते हैं कि प्यार मिले, मगर इस जनरेशन की जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, प्यार का मामला थोड़ा सा तंग होता है यहाँ पे, जहाँ पे 15 सेकेंड की रील को लोग 3-4 सेकेंड का वक्त देते हैं, 3-4 सेकेंड का अटेंशन देते हैं, तो 2 सेकेंड का अटेंशन क्या दिल को मिल सकता है? आजकल की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वक्त ही कहाँ है लोगों के पास, समय नहीं है ना। कहाँ, कौन, किसके लिए, क्यों, क्या मिल रहा है, कोई क्यों करे ना, लोग अपने आप के साथ में नहीं रहते, किसी और के साथ कैसे रह पाएंगे, सोचिए इस बात को। और ऐसा नहीं है कि मैं जनरेशन, नई जनरेशन की बात कर रही हूँ तो पुरानी जनरेशन के लोग हैं या जो हैं सब बड़े परफेक्ट थे, परफेक्ट लव स्टोरीज़ रही हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, और बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी खामियाँ, कमियाँ, खराबियाँ हैं, पर इंसान है, हम भी सोचते हैं कि क्या कभी कोई हमारे लिए भी जागेगा, कोई हमारे लिए भी कुछ करेगा, क्या हमारे लिए भी कोई फ़ोन का इंतज़ार करेगा, क्या कभी कोई हमारे बर्थडे पे कुछ सरप्राइज़ प्लान करेगा, क्या दिन के अंत में कोई पूछेगा कि तुम्हारा दिन कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या कभी कोई बिना पूछे, बिना हमारे कहे, ये आँखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं ये जान पाएगा। ये सब हम ही चाहते, सब हमारे मन की बातें, सब ये मैं नहीं, आप नहीं, सब जो लोग भी सुन रहे हैं, सब सबके दिल में यही बातें चल रही होती हैं, सबकी इच्छाएं एक ही हैं, और वक्त की कमी बोलें या जो भी बोलें, जहाँ या किस्मत बोलें या क्या बोलें, कि जहाँ हमें चाहिए होता है प्यार, वहाँ पे हमें मिलता नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको प्यार मिल पाना, और अगर उसी एक इंसान से प्यार मिलने की बात हो जैसे कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर तो अगर वो मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, तो उसको खुशकिस्मती कह सकते हैं, उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद बोल सकते हैं, नेमत बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कितना, कितने परसेंट होता है ऐसा कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं हमें वहाँ से प्यार मिल जाए? तो प्यार मिलना बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे बताइए कि ये जो गाने मैं सुना रही हूँ आपको, ये गाने कैसे लग रहे हैं? और मुझे लगता है कि ये टॉपिक से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, बहुत मिलते जुलते गाने हैं, बहुत अच्छे लग रहे होंगे गाने आप लोगों को भी, बहुत ही सुंदर सा। मैं अगला ये वाला गाना लेके आई हूँ आपके लिए, पुरानी मूवी है, 1985 की मूवी गुलामी, उसका गाना सुनाती हूँ मैं आपको, और सुनिए और बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं हम आज कमबख्त, कमबख्त इश्क प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मसला क्या है इसका, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में, प्यार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहता क्या है। अगर मैं थोड़े से पुराने समय की बात करूं तो शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। सच है ये बात कि बहुत से लोग जिनकी शादियों को बहुत बहुत साल हो जाते हैं, 20, 25, 30, 35 साल हो गए शादी के, आप एक कमरे में एक बिस्तर पे सोते हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन रिश्ते निभा रहे हैं वो, लेकिन क्या उनके बीच में प्यार है, क्या वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, या वो रिश्ते निभा रहे हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है, ड्यूटी कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं साथ में रह के, फ़र्ज़ निभा रहे हैं अपने। फिर जब वो अपने अगले जनरेशन के बच्चों को देखते हैं कि उन्हें प्यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें प्यार क्यों नहीं मिला, कि अब हम अपनी जनरेशन की बात करें, आगे नई जनरेशन, नई पीढ़ी की बात करें, तो उन्हें पता नहीं है, उन्हें प्यार पता नहीं है, और उन्हें समझ नहीं आता कि प्यार को रिस्पॉन्ड कैसे करें, कैसे उसका कैसे उसको समझें, या क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता ना कि उनको कि इसका जवाब कैसे देना है, कैसे रिएक्ट करना है प्यार के ऊपर में। और ये पूरी की पूरी एक जनरेशन है, शायद मुझे लगता है उसको प्यार के मायने नहीं पता है, वो फटाफट वाले अफेयर, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल दैट मुझे वो समझ में नहीं आते। पर शायद उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद बचपन में देखा है कि रिश्ते संभालना क्या है और जिम्मेदारियां संभालना उन्होंने देखा है और सीखा है, उन्होंने शायद बचपन में से प्यार देखा ही नहीं। और अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में हमारी माओं के लिए, माँ के लिए प्यार क्या था, उनके लिए था कि हमारी खुशी और हमारी अच्छी सेहत, और पापा के लिए खुशी है कि हम अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, हमने प्यार का ये रूप देखा है। और तो जो जनरेशन है वो उसको प्यार का यही मतलब समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो इतने सालों से साथ रहने वाले पति पत्नी, माँ बाप, उनका साथ में रहते रहते उन्हें इतना काम करने की, जिम्मेदारियों की इतनी आदत हो जाती है कि उस चक्कर में शायद उनका प्यार कहीं खो जाता है। और क्या बोलूँ कि आजकल की जनरेशन के बारे में, अगर मैं ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रही हूँ, पहले के ज़माने की देख रही हूँ और अभी की मैं बात कर रही हूँ, तो आजकल की जनरेशन बहुत सब कुछ फटाफट, जल्दी जल्दी करना चाहती है, फटाफट टाइम ही नहीं है। जैसे कि मैं रील की बात करी थी कि रील देखने का टाइम नहीं है, फटाफट स्क्रॉल करते जा रहे हैं, भागती दौड़ती ज़िंदगी, वो कुछ डिफरेंट ही है। ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, सब कुछ फटाफट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, ट्रैवल करना पसंद है कि कहीं कहीं चले जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं कि जाके शायद उन्हें कोई ढूंढे, और या फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, या फिर कुछ खोया है, खुद को कुछ ढूंढना चाहते हैं। बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, मुझे ऐसे लगता है। और घुमा फिरा के, लेकिन चाहे वो नई जनरेशन की बात करूँ मैं या पुरानी जनरेशन की बात करूँ, घुमा फिरा के दिल तो दिल है, और दिल चाहता है कि उसे कोई प्यार करे, उसे चाहे, उसे कोई समझे। और ये लेकिन ये कश्मकश हमेशा बनी रहती है किसी भी जनरेशन की हो, कि हम किसी को चाह रहे हैं तो क्या वो हमें चाह रहा है, पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। पसंद करना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पसंद तो आप बहुत लोगों को आ सकते हो, और आप बहुत लोगों को और बहुत चीज़ों को पसंद कर सकते हो, लेकिन वो जो प्यार है, वो जो असली वाला प्यार होता है, जिसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कि चाँद पर तो आप जा सकते हो, चाँद पर जा सकते हैं, जहाज़ उड़ा सकते हैं, पर किसी को अपने प्यार में नहीं डाल सकते। मैं घूम फिर के वही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात आपके दिमाग में डाल देना चाहती हूँ। और सुनिए ये बहुत ही खूबसूरत से दो गाने, बहुत बहुत प्यारे गाने हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट शो विद मी शालिनी। बात कर रही हूँ आज मैं प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। प्यार वो है कि जो जब कोई इंसान आपकी गलतियों से, आपकी खामियों से, आपकी कमियों से भी प्यार करे। पसंद करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, मगर प्यार, प्यार कुछ अलग है, उसका उसकी कैटेगरी अलग होती है। आपके आपने कोई मेकअप किया, आप तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपके बालों में तेल लगा हुआ, आपने नहाया है कि नहीं नहाया है, शक्ल सूरत बदसूरती खूबसूरती, इससे प्यार का कोई लेना देना होता नहीं है। खूबसूरती के साथ प्यार का कोई लेना नहीं है, अच्छाई के साथ प्यार का कोई लेना देना नहीं है, बड़े बैंक बैलेंस के साथ, तो परफेक्शनिस्ट होने से, इन सब से प्यार से कुछ संबंध होता नहीं है असल में कुछ भी। अगर सब कुछ बहुत खूबसूरत कोई इंसान हो और बहुत ही परफेक्टली अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहा है और सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे तो प्यार मिल जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो परफेक्शनिस्ट हैं और सब कुछ सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से उठते हैं, एकदम किताबी तरीके से जो बताया गया है उनका बिहेवियर और उनका काम सब अप टू डेट, सब परफेक्ट रहता है। लेकिन ऐसा हो तो उन्हें भी प्यार मिला होता, मिलना चाहिए सारे लोगों को जो ठीक तरीके से करते हैं काम, मगर ऐसे नहीं होता ना। बिकॉज आई थिंक दैट लव इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट, लव इज़ व्हेन समवन एक्सेप्ट्स ऑल योर रॉन्ग्स एंड ऑल एंड स्टिल एक्सेप्टिंग योर रॉन्ग्स एंड बैड थिंग्स टिल दे फॉल इन लव विद यू एंड दे फॉल इन लव विद योर इम्परफेक्शंस। मुझे लगता है कि वो असल में सही वाला प्यार है। असल प्यार की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ जो आजकल हमें हर जगह दिखाई पड़ जाता है आसपास। ये मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपकी आँखों से आंसू जो टपक रहे हैं ये सामने वाले को पता हो, बिना बताए बिना कहे उसे पता हो कि आप क्यों उदास हैं। ये वो वाला प्यार है जो मणिरत्नम की जो मूवी है दिल से, उसमें मनीषा कोरेला बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होती हैं और शाहरुख खान फिर भी उन्हें बचाने जाते हैं, फिर भी उन्हें मदद करते हैं, फिर भी उसको प्यार करते हैं। दिल से मूवी में ही मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ। और ऐसे वाले प्यार की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपकी गलती के साथ भी उसे प्यार हो और आप उनकी गलती के साथ आप जीना चाहते हो, मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ। उनके गलत को आप स्वीकार करें, क्योंकि प्यार में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, प्यार में सब अच्छा ही होता है। अल्फाजों के दीवाने तो आपको बहुत मिलेंगे, प्यार उससे करो जो कि आपकी खामोशी को समझ सके।

मौसम गुजरते। दिल से रे, फ्रॉम द मूवी दिल से। प्यार की ये दौलत जिनके पास में है, वो कितने खुश नसीब और खुश किस्मत लोग हैं ना। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा ज़िंदगी में, इस लाइफ में सही किया होगा, नहीं तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा उन्होंने अच्छा, इसीलिए ऊपर वाले ने उनको ये सौगात प्यार की दी कि जिससे वो प्यार करते हैं उनको उसी से ही वापस में वो प्यार मिल रहा है, और उनके झोली में ये खुशियाँ डाल दी ऊपर वाले ने। और बहुत सारे लोग हैं जो बस इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ज़िंदगी में कि कब ये ठप्पा लगेगा प्यार के उनके ऊपर, कब उनको तो प्यार है जिनसे, उनका प्यार भी उन्हें वापस मिलेगा। तो अगर रिश्ता अगर दिल से है तो मन कभी नहीं भरता, बस ये बोलना चाहूँगी। और अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, ये एपिसोड पसंद आ रहा है, तो मुझे और रेडियो को ज़रूर फॉलो करें, ताकि नेक्स्ट वेंसडे हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आप मेरी और अच्छी बातों को मिस ना कर सकें। तो रेडियो को, शुद्ध देसी रेडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं शालिनी के नाम से, और इंस्टाग्राम पर RJ के नाम से फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। मैं सुनाती हूँ ये आपको आखिरी वाला गाना और लेती हूँ अलविदा इस प्रोग्राम से। और आप सुनिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए शुद्ध देसी रेडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते

आपके नाम जिंदगी कर दी, इंतहा आज इश्क की कर दी। जगजीत सिंह जी की आवाज सीधे दिल के अंदर तक जाकर इश्क की खुशबू फैला देती है। सच में इश्क, प्रेम, प्यार, मोहब्बत ना हो तो जिंदगी मुर्दाब सी हो जाए। मुर्दाब, बिना हलचल के एक ही जगह खड़े पानी की तरह। दुबई से मीनू का प्यार भरा सलाम, नमस्कार। आज की ही नहीं, आने वाली कई शामों को आप सबके नाम किया। आज के मैजिकल मेलोडीज में कहानी बुनते गीत जो बनेंगे मीत, इश्क की महकती सुनहरी यादों में डूबे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत की खुशबू होगी। इश्क रब से हो या उसकी बनाई इस दुनिया से हो, इसी खूबसूरत एहसास के साथ जीने में मजा है। वैसे तो साइंस के मुताबिक डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो दिल और दिमाग को प्यार मोहब्बत से सारोबार किए रखता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ भी सही रहती है। ये सिर्फ मेरा मानना ही नहीं है, हेलन फिशर का भी यही कहना है। चाहे तो गूगल पर उनकी रिसर्च देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिलचस्प तो ये है कि एक खास इंसान से ही इश्क होने के पीछे भी कुछ हद तक डोपामाइन का हाथ होता है, जिसे देखकर दिल की धड़कन बेकाबू होने लगे, गला सूखने लगे, हथेलियां पसीना पसीना हो जाएं, किसी गीत को सुनकर कोई खास याद आने लगे। आप अगले गीत में महसूस करके देखिए, जो फिल्म उस्तादों के उस्ताद से है, जिसे खूबसूरत म्यूजिक रवि जी ने दिया और गाया है रफी साहब ने।

0: You are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.
2: इश्क हूं मैं तेरी रूह में धड़कता हर पल. तू फना हो जाए तो भी रहूंगा तेरे वजूद में, इन हवाओं में तेरी खुशबू की मानिंद. इस खूबसूरत एहसास की तिश्नगी कहां खत्म होती है, शायद ताउम्र रहती है. बाय द वे, इस नए दौर के हाथ से जो हमें बदहवास किए जाते हैं, ऐसे में पुराने दौर में लौटकर कुछ वक्त के लिए सुकून से मेरे साथ बैठिए और सुनिए प्यारे एहसासों से भरे सुनहरे गीत.

0: असल में डोपामाइन के साथ साथ और भी कई शरारती केमिकल्स हैं जो दिल और दिमाग को किसी और ही दुनिया में पहुंचा देते हैं। खैर आप बताइए, सुनहरी यादों में डूबे जरूर बहुतों को कुछ तो याद आया होगा। सच सच बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी मासूमियत भरी बातें याद आएं, किसी पर जबरदस्त क्रश हुआ होगा, चुपके से उसी खास इंसान के चाय के झूठे कप को अपने होठों से लगाया होगा, या किसी के दुपट्टे को अपने गले से लपेट लिया होगा। आप माने या ना माने, इन गीतों को सुनकर आप में से कई अपने खूबसूरत नादानियों को याद करके मन ही मन हंस रहे होंगे। खैर बात करते हैं दो गीतों की। पहला गीत फिल्म आम्रपाली का था, जिसमें वैजयंतीमाला आम्रपाली की राजसी ड्रेस में उनके एक्सप्रेशंस, क्लासिक डांस के डिफरेंट मोमेंट्स, उनके चेहरे के हाव भाव बस देखते ही रह जाओ। कहीं भी कोई वल्गैरिटी नहीं दिखती है और सुनील दत्त तो अपने संयत अंदाज में सारी सिचुएशन को रोमानी बना देते हैं। फिल्म आम्रपाली के इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने और कंपोजिशन थी शंकर जयकिशन के, गाया लता दी ने। दूसरा गीत फिल्म अमानत का, दूर रहकर ना करो बात करीब आ जाओ। इस गीत को लिखा साहिर जी ने, कंपोज किया रविशंकर जी ने और गाकर चार चांद लगाए रफी साहब ने। मनोज कुमार और साधना ने अपनी अदाकारी से वैसे भी खूबसूरती और बढ़ा दी इस गीत की।
1: आप सुन रहे हैं नंबर वन ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और जानकारी के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सुनते रहिए सदाबहार और सुपरहिट हिंदी फिल्मी गाने।
2: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: पुराने और नए का संगम इसी को कहते हैं। आज के कुछ नए सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जिन्हें एक बार सुन लें तो दिल में बस जाते हैं, बार बार सुनने का मन करता है। वजीर फिल्म का गीत तेरे बिन बहुत सुकून भरा है, जिसे सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने एक साथ गाकर उसे और भी खूबसूरत बना दिया। दूसरी तरफ अदिति हैदरी की ग्रेसफुल एंट्री का भी जवाब नहीं। फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव का रोमांटिक गीत शायद यही तो प्यार है, लिखा समीर ने, लाजवाब संगीत दिया अदनान सामी ने और गाने वाले भी खुद हैं। लेकिन लता दी की आवाज ने तो जैसे उम्र की हर सीमा को पार कर लिया हो, लगता है 16 साल की उम्र हो गाने वाले की। कुछ कहने को शब्द नहीं है, बस दुआ है जल्दी से जल्दी वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए।
1: Advertise your business and events with the Shuddha Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhadesiradio.com and we will get in touch with you as soon as possible. We grow, you grow, we both grow together.
2: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। शुद्ध देसी रेडियो

फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत आज भी रुमानियत की चरम सीमा पार करता महसूस होता है। नय्यर साहब का म्यूजिक, उस पर रफ़ी जी और आशा ताई की मत भरी आवाज़, और ऐसे में शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर को बिग स्क्रीन पर देखकर कोई भी खुद ब खुद प्यार के नशे में डूब जाएगा। जब किसी एक खास इंसान पर प्यार आया होगा, छुप छुप कर उसे देखा होगा, 2400 घंटे उसी का ख्याल दिल और दिमाग पर छाया होगा। आई एम श्योर जो भी इन गीतों को सुन रहे हैं, उनमें से कुछ तो पहले ही पहुंच चुके होंगे अपने शरारत भरे मत भरे दौर में। हिंदी काव्य जगत और फिल्मी दुनिया के मशहूर कवि गोपाल दास नीरज, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें इश्क, प्यार, मोहब्बत, प्रेम के मस्त गगन का सबसे चमकीला ध्रुव तारा कहा जाता है। उनके काव्य का सार सिर्फ प्रेम है। उनकी एक कविता आप सबसे साझा करना चाहती हूं, गौर कीजिए। मन तो मौसम सा चंचल है, मन तो मौसम सा चंचल है, सबका होकर भी ना किसी का, अभी सुबह का अभी शाम का, अभी सुबह का अभी शाम का, अभी रुदन का अभी हंसी का, और इसी भौरे की गलती क्षमा ना यदि ममता कर देती, ईश्वर तक अपराधी होता पूरा खेल दोबारा होता, प्यार अगर थामता ना पथ में उंगली इस बीमार उम्र की।

ऐसी शरारत भरी अदाएं जब याद आती हैं तो एक के बाद दूसरी और फिर बेहिसाब रुमानी लम्हे याद आने लगते हैं, क्योंकि इश्क प्यार मोहब्बत के पल दिल और दिमाग को हैप्पीनेस केमिकल से भर देते हैं। फिल्म ओपेरा हाउस के इस गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया चित्रगुप्त ने, जिसे आवाज दी लता दी ने, और फिल्म के पर्दे पर सरोजा देवी ने अपना जादू चलाया। पुल मिलाकर इस गीत से इश्क की महक फैल गई, लेकिन उस महक से एक और एहसास जागा कि इश्क का वजूद बहुत बड़ा है, जिसमें दुनिया के उस तबके को प्यार मोहब्बत करना भी जरूरी है जिसे गरीबी और भूख की मार ने बेहाल किया हुआ हो। अभी अभी मन में पैदा हुआ एक ख्याल कि जिस तरह से मैं मानती हूँ प्रेम और पीड़ा में कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, तो उसी तरह से इश्क और अश्क में भी वही नाता है। चाहे इंसान से किया हुआ प्यार हो या कुदरत से किया हुआ प्यार हो, खुशी के साथ साथ दर्द का होना भी लाजमी है। अगला गीत कुछ इस तरह का है कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, और कमाल तो ये है जिससे मोहब्बत कर ली उसे मोहब्बत के सिवा बहुत कुछ और भी दिखता है इस दुनिया में।

फिल्म दीदी के इस गीत को म्यूजिक दिया एन दत्ता साहब ने और गाया सुधा मल्होत्रा और मुकेश जी ने। क्या लाजवाब बोल साहिर लुधियानवी के, जो दिल में गहरे उतर जाते हैं। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। तुम अगर आंख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। इश्क सूफियाना, रूहानी और न जाने किस किस रूप में होता है, जो प्रेमी प्रेमिका के दायरे में ही नहीं बंधा होता, उसके आगे भी आसमान का विस्तार लिए होता है। ऊंच नीच के भेदभाव के बिना इंसान हो या पशु पक्षी, सभी से प्रेम करना ही प्रेम की चरम सीमा है। अगला गीत खामोशी फिल्म का है। इतने खूबसूरत बोल गुलजार जी के हैं कि जो किसी ऐसा लगता है जैसे किसी और के हो ही नहीं सकते हैं, पहचाने जाते हैं कि वो गुलजार साहब के ही बोल हैं, और जिसे हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया और गाया लता दी ने। राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और वहीदा रहमान, इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ वहीदा रहमान मुझ पर छाई हुई हैं। मुझे आज भी याद है कि माँ की तीखी नज़र, देखो तो रो रो कर आँखों का बुरा हाल कर लिया है, और मुझे गुस्से वाली नज़र से देखकर मीठा सा झिड़क दिया था। प्यार का एहसास महसूस करना हो तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखिएगा।

प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, और जो इस खामोशी को सुन ले, समझ ले, वही प्यार को कुछ कुछ समझ पाए हैं। मैं हूं मीनू दुबई से, और आप सुन रहे हैं मैजिकल मेलोडीज में कहानी बुनते गीत, जो बने मीत इश्क की महक में डूबे, सुनहरी यादों में भीगे प्यार के कुछ पल तो याद आए होंगे, पहले प्यार के अजब गजब किस्से भी याद आए होंगे। हो सके तो शेयर कीजिएगा अपनी फीडबैक के साथ। शुद्ध देसी रेडियो के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। सुनने के लिए आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जाते जाते एक नया गीत सुनिए, इश्क तुम्हारा, जिसे लिखा आनंद ने, गाया और संगीत दिया अल्ताफ सैयद ने। यूं तो हैं लाखों चेहरे हसीं, पर इश्क सभी से होता नहीं, पर एक दफा जो दिल हो फिदा तो फिर चैन से ये सोता नहीं। फिर भी मेरी दुआ है कि अगली मुलाकात तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: सो फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग शुद्ध देसी रेडियो.
1: कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा. माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक. मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: तो दोस्तों सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, दी ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन द साउथ ईस्ट।
1: यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। इफ इट इज पीपल यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। यू हैव गॉट टू पे अटेंशन टू वॉट यू आर अट्रैक्टेड टू, बिकॉज एज यू होल्ड इमेजेस ऑफ वॉट यू वॉन्ट, यू आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू थिंग्स एंड दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू यू। बट इट लिटरली मूव्स इन टू फिजिकल रियलिटी विद एंड थ्रू यू, एंड इट डज दैट बाई लॉ, बाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्म।

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
1: अच्छा है, जैसे दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों। दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन, और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। हमेशा अगर आप

आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे। और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: आज का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।
1: लाइक एंड फॉलो अवर FP पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स।

0: की लड़का कुत्तों का होता है,
1: शेरों का जिगरा होता है।

0: अपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
1: कुछ सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। शुद्ध।

0: सौदागर हैं। जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: देसी रेडियो की टीम आपके लिए लेके आएगी बॉलीवुड के हर जमाने के सॉन्ग, पुराने जमाने से लेके नए जमाने तक, गजल से लेके न्यू हिट्स तक, और वो भी नैशविल कैरेक्टर, नैशविल फ्लेवर के साथ।
2: जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन हो या रात, वीकेंड हो या वीकडे, आप ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे हो या घर के काम में बिजी हो, हमारा रेडियो स्टेशन आपके साथ होगा हमेशा। एक मैसेज।

0: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: आप हैं हमारे साथ हमारे रश आवर प्रोग्राम में ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा ऐप iOS का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐप स्टोर में जाएं और टाइप करें SHUDDH स्पेस DESI स्पेस RADIO और वहां पे जाके आप हमारा शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड कीजिए और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू रेट द ऐप।

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: अच्छा है, देश से दूर हो तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए।

0: किसी को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: शुद्ध

आप सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA, विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल डेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आ गया है मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो।

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: रही है मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू लाइकिंग दिस प्रोग्राम? हमें बताते रहिए, प्लीज पोस्ट ऑन आवर फेसबुक पेज या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए आपके विचार, आपके लाइकिंग, एंड डू लेट अस नो हाउ वी डूइंग सो दैट वी कैन ऑलवेज मेक चेंजेस टू अडैप्ट टू योर लाइकिंग।

सौदागर हैं जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

आज सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: Advertise your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com. It is info@shuddhdesiradio.com, and we will get in touch with you.

हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: म्यूजिक।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: बुलाने हैं कितने
1: आज का
2: Hey, all those business owners over there.
3: अरे बोले लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

जैसे दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध।

आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो यूएसए'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब। यू आर लिसनिंग टू अमेरिका'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, देश से दूर पर दिल के करीब।

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइल।
1: रेडियो इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
2: चलो आज पिक्चर देखते हैं।
3: नहीं नहीं पिक्चर नहीं, आज हम लोग डिस्को जाएंगे।
2: नहीं
3: चलो जल्दी से चेंज कर लो अभी।
2: क्यों, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
3: ये भी कोई कपड़े हैं, बिल्कुल बेकार लग।
2: बेकार तो तुम लग।

आपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो।
1: फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज, व्हाटएवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज। In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

0: हमें आपकी बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट मिल रही हैं और हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और वो भी बहुत जल्दी ही। आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और फीडबैक या कोई भी सजेशन हमारे शुद्ध देसी रेडियो के फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: सी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: आई एम योर होस्ट अनिरुद्ध। कीप लिसनिंग टू योर ओन शुद्ध देसी रेडियो।
2: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ।
1: यू आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो, यूएसए'स नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। देश से दूर पर दिल के करीब।

सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट द शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग.
1: शुद्ध देसी रेडियो, फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज व्हाटएवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

0: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो अवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड लीव अस फीडबैक देयर.
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की. महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का. खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की.

0: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेश न्यू एपिसोड्स ऑफ चक्का जाम।
1: चक्का जाम हम आपके लिए लेके आते हैं वीकडेज इवनिंग आवर्स 4 to 7 PM। तो सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए अबाउट शुद्ध देसी रेडियो।
2: सुन रहे हैं मिडिल टालेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर. ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddhdesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक.
1: दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर.
2: Oh my God, this is original.

0: हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: आओ, हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

0: आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।
1: कुछ सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: स्थानीय आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध।

0: सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए
1: दोस्तों, डे बाय डे हमारे लिसनर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू।
2: तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपना आपका शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए।

आपका फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो वेयर यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस एंड इवेंट्स विद शुद्ध देसी रेडियो. इट इज सिंपल, इट इज फास्ट एंड इट वर्क्स. सिंपली राइट टू अस एट info@shuddhdesireadio.com एंड वी विल गेट इन टच विद यू.

0: सौदागर हैं। जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: सुविचार, आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। हिंदुस्तानी आदमी दो चीज़ें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: छुट्टी का दिन हो,
1: हाथ में चाय का कप हो,
0: साथ हो आपके फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो का,
1: तो इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या होगी।
0: तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूँ आपका होस्ट अनिरुद्ध
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। रेडियो
2: इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन सुविचार।
1: आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।
1: आओ, अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। If it is people you need, you will attract it. You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you, and it does that by law, by the law of attraction.

0: दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनिरुद्ध और आप सुन रहे हो शुद्ध देसी रेडियो। प्रोग्राम का नाम है बम्पर टू बम्पर, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक।
1: और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी, और शाम को हम आपके लिए रश आवर में लेके आएंगे हमारा प्रोग्राम चक्का जाम।

0: सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: सुन रहे हैं मेरिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप योर
2: स्माइल। यू आर ट्यून्ड इनटू शुद्ध देसी रेडियो, USA's नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब।

drop the bait.

here is a little checklist for you all. So let's start. आप अपनी गाड़ी में बैठ गए, check. कंपनी या ऑफिस का बैज ले लिया, check. वॉलेट, check. लैपटॉप, check. लंच बैग, check. शुद्ध देसी रेडियो ऑन, check. जी हाँ, अब आप तैयार हैं ऑफिस या अपने काम पे जाने के लिए, तो गाड़ी संभाल के चलाइएगा, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते रहिएगा और सुनते रहिए ऑफ़ कोर्स बम्पर टू बम्पर गाने ओनली ऑन आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो.

0: हेलो नैसल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आए मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए।
1: आओ, फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज व्हाटएवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज। In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

बोले लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

0: सौदागर हैं। जानी, नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए यानी?
1: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, 2-2 अंडे देने हैं।
2: ओके बॉस।
1: अरे, सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
2: बॉस, टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं।
3: You are tuned into शुद्ध देसी रेडियो, USA's number one Bollywood रेडियो स्टेशन, देश से दूर पर दिल के करीब। You are listening to America's number one Bollywood radio station, शुद्ध देसी रेडियो, देश से दूर पर दिल के करीब।
4: Hey Alexa, do I have any reminders today?
5: Your reminder for today: complete graffiti wall.

चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: अच्छा है, देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: हम लेके आते हैं आपके लिए शुद्ध देसी रेडियो पे एवरी सैटरडे एक्शन पैक्ड शोज, और वीकडेज में हम आपके साथ होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग रश आवर्स में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह।
1: तेरा पीछा ना ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे।
2: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट. लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर. ऑल्सो डाउनलोड आवर iOS ऐप और लॉग ऑन टू www.shuddesiradio.com फॉर नॉन स्टॉप म्यूजिक.
1: सुन रहे हैं मिडिल टेलीसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.

अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट।

0: और अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑल।

0: follow our Facebook page, Shuddh Desi Radio, and leave us feedback there. Download our free iOS app and log on to www.shuddhdesiradio.com for non-stop music and lots
1: of fun. वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

0: एनीटी किस तरह हो सकती है मद्रास
1: टमिलियन
0: ओ इको गल है कविता तेरी नु है
2: मैं कह जी साउथ इंडियन स्टैंडर्ड दे हिसाब नाल वो तेरी सोनी है
3: रजी एनु मिल साडे प्रीति लवर अन्याय
2: अन्याय भला भी कोई ना होया।

0: म्यूजिक सिटी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। कीप ऑन पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर फेसबुक पेज और दोस्तों अब आप हमारे शुद्ध देसी रेडियो को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है SHUDDHDESIRADIO जो कि हमारे
1: वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

तेरी बातें मेरे जहन में घूमती हैं, इस कदर तेरी बातें मेरी जहन में घूमती हैं जैसे तेरी बातों का रेडियो सुन रही हूँ। जी हाँ, आवाज की दुनिया के चाहने वालों, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: बंद करो ये बकवास, कोई नामी गाना शुरू करो।
1: का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।
2: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं बोल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।
1: तो दोस्तों, आप I-65 पे हो या I-40 पे हो या फिर I-440 हो या फिर I-24 हो या फिर कोई सरफेस रोड हो, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे शुद्ध देसी रेडियो के ज़रिए।

are tuned into Shuddh Desi Radio, USA's number one Bollywood radio station. Desh se dur, par dil ke kareeb. You are listening to America's number one Bollywood radio station, Shuddh Desi Radio. Desh se dur, par dil ke kareeb. Shuddh Desi Radio, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: स्टूडियोज ऑफ शुद्ध देसी रेडियो। मैं हूँ आपका होस्ट अनिरुद्ध
1: और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी
2: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी?
1: हेलो नैशविल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन, और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

आपने। आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: आप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: अरे भाई, ये खासी नहीं, एक फिल्मी अंदाज था। और ऐसी ही सुपरहिट अंदाज के साथ हम लाएंगे बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक आप सबके लिए। तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।

देश से दूर हूँ तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

बोले लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं, के लाउड बोली नेचर बोला दर्शाते हैं, बॉर्डर पे रक्षा करके खेती सबको खाना खिलाते हैं। हम हरियाणा से हैं जनाब, हम अपने ब्लड ग्रुप में लेजेंड लिखवाते हैं।

मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज

सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा, ज़रा सा

शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन USA विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

0: listening to Shuddh Desi Radio. Please like our Facebook page and let us know how we're doing.
1: And do check us out at www.shuddhdesiradio.com for latest updates.
2: आज का विचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

0: कल है मंथ एंड और तुम सबको अपना टारगेट पूरा करना है, दो दो अंडे देने हैं।
1: ओके बॉस।
0: अरे सबने तो अपना टारगेट पूरा कर दिया है, तुम्हारा टारगेट कहाँ है?
1: बॉस टारगेट पूरा करने के लिए तो एक अंडा दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ।
2: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

0: देसी रेडियो के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी।
1: आई एम योर होस्ट अनिरुद्ध। कीप लिसनिंग टू योर ओन शुद्ध देसी रेडियो।

0: इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। इफ इट इज मनी यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। इफ इट इज पीपल यू नीड, यू विल अट्रैक्ट इट। You have got to pay attention to what you are attracted to, because as you hold images of what you want, you are going to be attracted to things and they are going to be attracted to you. But it literally moves into physical reality with and through you, and it does that by law, by the law of attraction.

क्या जादू चलाया तुमको,

0: सो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर लाइकिंग आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो. प्लीज डू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट दिस शुद्ध देसी रेडियो एंड डू लाइक अस ऑन आवर फेसबुक पेज एंड टेल अस हाउ वी डूइंग
1: शुद्ध देसी रेडियो. फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज व्हाटएवर यू आर फोकसिंग ऑन ग्रोज. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.

0: छुट्टी का दिन हो,
1: हाथ में चाय का कप हो,
0: साथ हो आपके फेवरेट शुद्ध देसी रेडियो का,
1: तो इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या होगी।
0: तो सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।
2: आज का सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।

0: guys are tuned into Shuddha Desi Radio, the only Bollywood radio station in Southeast.
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो. सुनते रहिए and always keep

चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: your favorite Shuddh Desi Radio, where you can advertise your business and events with Shuddh Desi Radio. It is simple, it is fast, and it works. Simply write to us at info@shuddhdesiradio.com and we will get in touch with you.
1: सुना आपने? आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: शुद्ध देसी रेडियो,
1: इतना शुद्ध जैसे माँ के हाथ का खाना,
0: जैसे पहले बारिश की सोंधी खुशबू,
1: जैसे नन्हे बच्चे की खिलकारी,
0: शुद्धता से भरपूर आपका अपना।
1: नहीं नहीं दोस्तों, ये कोई घी का एड नहीं है, ये है आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।

सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए जानी।

अपनी फरमाइश के गाने हमें भेजते रहिए। आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कुछ बहुत ही बढ़िया गानों की, जिन्हें कि हम लेके आ रहे हैं अपने सैटरडे के प्रोग्राम में। तो प्लीज कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट एंड देन वी विल डेफिनेटली

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे, अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे, और अगर हमेशा अमीर बनने के पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

दोस्तों, ये है एक नया महीना, नया हफ्ता और हफ्ते का एक नया दिन। और इस नए दिन में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया सुविचार। कहीं पढ़ा था मैंने कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। हमेशा अगर आप आराम के चक्कर में रहेंगे तो आप आलसी हो जाएंगे। अगर हमेशा परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो बहुत गुस्सैल बन जाएंगे। और अगर हमेशा अमीर बनने के, पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लालची, बहुत ग्रीडी बन जाएंगे। तो टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड।

सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

आप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की।

आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। दवा जेब में नहीं जाके शरीर में जाए तो असर करती है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में ना जाके अगर आपके जीवन में आपकी लाइफस्टाइल में उतरें तो ही उनका असर होता है।

के साथ सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना अब है और भी आसान. सिंपली ऑल यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द ऐप. वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट का विंडो है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, सॉन्ग का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं. एंड एवरी थिंग इज़ ऑन योर फिंगर टिप्स गाइज. सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड सेंड

0: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों।
1: आओ, हेलो नेशनल। अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो, शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ।

0: इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट। लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड ड्रॉप कमेंट्स एंड फीडबैक देयर। Also download our iOS app or log on to www.shuddesiradio.com for non-stop music fun.

हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नेशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: देसी रेडियो की टीम आपके लिए लेके आएगी बॉलीवुड के हर जमाने के सॉन्ग, पुराने जमाने से लेके नए जमाने तक, गजल से लेके न्यू हिट्स तक, और वो भी नैशविल कैरेक्टर, नैशविल फ्लेवर के साथ।
1: जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन हो या रात, वीकेंड हो या वीकडे, आप ऑफिस के ट्रैफिक में फंसे हो या घर के काम में बिजी हो, हमारा रेडियो स्टेशन आपके साथ होगा हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड।
2: जैसे दूर हो तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।

0: दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।
1: सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू लाइकिंग दिस प्रोग्राम? हमें बताते रहिए, प्लीज पोस्ट ऑन आवर फेसबुक पेज या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए आपके विचार, आपके लाइकिंग, एंड डू लेट अस नो हाउ वी डूइंग सो दैट वी कैन ऑलवेज मेक चेंजेस टू अडैप्ट टू योर लाइकिंग।

हम सौदागर हैं, यानी नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह आप भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?

वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज़ की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुविचार। एक मूर्ख व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है, एक ही मिस्टेक करता है और उससे कभी नहीं सीखता। एक कम बुद्धिमान, एक लेस इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करता है। मगर एक असल में समझदार और बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, दूसरों की गलतियों से भी सीखता है और रिपीट नहीं करता अपनी सेम मिस्टेक्स।
1: हे गाइस, आर यू स्टिल लिसनिंग टू अस ऑन शुद्ध देसी radio.com? Do you guys know that we have an iOS app now? So go to App Store and look for our app. Do search by Shuddh Desi Radio. That's SHUDDH space Desi. That's DESI Radio. That's RADIO. And you will find our app. Download it. It's a free app. So there's no way you have to pay anything to listen to our music. So download and tell us how we are doing.

सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। यदि किसी इंसान की कोई भी बात आपको बुरी लगे तो उसे दो तरह से सोच के देखिए। यदि वो इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी में, तो उस बात को भूल जाइए। और अगर वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को भूल जाइए।

0: शुद्ध देसी रेडियो द नंबर वन ऑनलाइन इंडियन रेडियो इन यूएसए विच नॉट ओनली प्लेज बॉलीवुड सॉन्ग्स बट ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर इट्स रीजनल एंड लोकल फ्लेवर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनना है कुछ रीजनल सॉन्ग्स तो आप सुन सकते हैं ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो, द ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन इन साउथ ईस्ट। लाइक एंड फॉलो अवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड लीव अस फीडबैक देयर।

सकते हैं। एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: देश से दूर हूँ तो क्या देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा। अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून क्योंकि आ गया है।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
2: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
3: सामने वाले ने किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको माफ़ करना, उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा कर देना, वो बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है ना। अगर आपके साथ भी ये बात सच है कि आप किसी ने आपके लिए कोई गलत काम कर दिया है और आप ऐसा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप एक छोटी सी बात ध्यान में रखें कि सामने वाले ने ये गलती जानबूझ के नहीं करी है, दैट वॉज़न्ट दैट पर्सन्स इंटेंट टू डू दैट मिस्टेक, अगर आप ये बात अपने ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको अगले इंसान को माफ़ करना, क्षमा करना और या फिर इस बात को भूल जाना थोड़ा सा ज़रा सा आसान हो सकता है। तो थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप अगर ध्यान में रखें तो थोड़ी सी लाइफ और आसान हो जाएगी। और ऐसी ही छोटी छोटी सी और अच्छी बातों को, सुविचारों को सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

0: सुन रहे हैं मिडिल टॉलेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: और लोग ये सारे सुनो सुनो

0: सौदागर है जानी। नैशविल में एक नया ऑनलाइन रेडियो शुरू हुआ है, शुद्ध देसी रेडियो। मेरिल टेनेसी के इस ऑनलाइन रेडियो को सुनते रहिए और मेरी तरह भी अपने पसंदीदा हिंदी गानों का मजा लीजिए। समझ गए?
1: To share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most, but you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। So watch what you think.

0: आपने आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: लाइक एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज शुद्ध देसी रेडियो एंड लीव अस फीडबैक देयर। डाउनलोड आवर फ्री iOS ऐप एंड लॉग ऑन टू www.shuddhdesiradio.com for non-stop music and lots
2: where
1: of fun.
2: Where focus goes, energy flows. And where energy flows, whatever you are focusing on grows. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.
3: ठंडा कुछ नहीं, सब गरम ही गरम है, अंगार है।

0: ne kokia.
1: Bothar, bothar, bothar, bothar.

0: देसी दूर हूँ तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी रेडियो।
1: बेबी मेरी हाय हाय कोली मार।

0: हिंदुस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो
1: आज का सुविचार आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी की जुबानी। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर के बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित, यही लेखा जोखा है कि जो झुकता है वही हासिल करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, जब लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों

0: देसी दूर हूँ तो क्या, देसी गाना भी सुनने को नहीं मिलेगा हा? अरे पक गया था अंग्रेजी पक पक सुन के, अब मिला है दिल को सुकून, क्योंकि आ गया है शुद्ध देसी रेडियो। अच्छा है, सुनते रहिए शुद्ध देसी
1: रेडियो। सुन रहे हैं नैशविल का वन एंड ओनली बॉलीवुड रेडियो स्टेशन, जहां पे हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारी मज़ेदार बातें, लोकल इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, आपको आपकी फरमाइश के गाने सुनाते हैं, अपनी पसंद के प्रोग्राम सुनाते हैं और कुछ नए टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आपके लिए नया ढूंढ के लाते हैं। ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो, ओनली ऑन योर ओन सिटी।
2: Focus goes, energy flows, and where energy flows, whatever you are focusing on grows. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows.

आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज।

पाकिस्तानी आदमी कहीं भी रहे, दो चीजें कभी नहीं भूल सकते, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब सिनेमा आ गया है नैशविल के और भी नजदीक। मिडिल टेनेसी का ऑनलाइन रेडियो शुद्ध

0: शुद्ध देसी रेडियो, इतना शुद्ध जैसे बारिश की पहली बौछार, जैसे माँ के हाथ का अचार, जैसे नन्हे बच्चे की किलकारी, जैसे मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू।
1: हेलो नेशनल, अब आप लेटेस्ट हिंदी फिल्मों के गाने और आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि अब आगे आया मिडिल टेनेसी का अपना ऑनलाइन रेडियो शुद्ध देसी रेडियो। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करते रहिए। आओ

0: मिडिल टेनेसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो, सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
1: म्यूजिक सिटी, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो। कीप ऑन पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर फेसबुक पेज और दोस्तों अब आप हमारे शुद्ध देसी रेडियो को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है SHUDDHDESIRADIO जो कि हमारे

0: हमें आपकी बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट मिल रही हैं और हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और वो भी बहुत जल्दी ही। आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट और फीडबैक या कोई भी सजेशन हमारे शुद्ध देसी रेडियो के फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं।
1: I'm going to share a beautiful quote from the book The Secret. You become what you think about the most. But you also attract what you think about the most. यानी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसे ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. So watch what you think.

0: नैशविल, फिकर नॉट जब है शुद्ध देसी रेडियो का साथ। ट्रैफिक में गाड़ी का चक्का जाम है तो क्या हुआ, हम लेके आए हैं कुछ सूदिंग गाने आपके रश आवर को आसान करने के लिए। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम चक्का जाम।
1: सुन रहे हैं मिडिलटन डीसी का नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: दोस्तों डे बाय डे हमारे लिसनर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू.
1: तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना आपका शुद्ध देसी रेडियो सुनते रहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए, उनके साथ भी शेयर कीजिए.

0: किसी को चाहिए माँ के हाथ का खाना और बॉलीवुड का गाना। खाना तो हम आपके लिए नहीं लाए हैं, लेकिन गाना जरूर लाए हैं, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।
1: आप सुन रहे हैं मिडिल टेनेसी का नंबर 1 ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

0: वजह से आपकी गाड़ी का चक्का जाम है, लेकिन हमारे गानों की रफ्तार है बहुत तेज और आप है हमारे साथ हमारे शाम के प्रोग्राम चक्का जाम में।
1: और आप हमें सुन सकते हैं सुबह की रश आवर प्रोग्राम में जिसका नाम है बम्पर टू बम्पर।
2: आदमी दो चीजें कभी नहीं भूलता, एक है माँ और दूसरा सिनेमा। माँ के आशीर्वाद से अब हिंदी गाने सुनना हो गया है और भी आसान। शुद्ध देसी रेडियो का iOS का ऐप डाउनलोड करो और गाने सुनना शुरू कर दो।

focus goes, energy flows. And where energy flows, whatever you are focusing on grows. In other words, your life is controlled by what you focus on. That's why you need to focus on where you want to go, not on what you fear. When you next time find yourself in a state of uncertainty, resist your fear, shift your focus toward where you want to go, and your actions will take you in that direction. So, where focus goes, energy flows. और अब वक्त हो चला है आज के सुविचार का, जो कि लाई हूँ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त शालिनी। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। चरखे पे घूमती मिट्टी को देखकर शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ समय के बाद इससे क्या निकलने वाला है। हो सकता है कि कोई घड़ा निकले, या ये भी हो सकता है कि कोई फूलदान निकले। आम सी दिखने वाली किसी भी चीज की कीमत हम उस समय समझ पाते हैं जब वो अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नए खूबसूरत अवतार के साथ हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए सुनते रहिए आपका अपना शुद्ध देसी रेडियो।

ढूंढने से नहीं मिलते रू से चाहने वाले, खुदा खुद ढूंढ के देता है वो शख्स जो दिल को सुकून दे। हाय, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। आप किसी को पसंद करें, उन्हें चाहें, उनके लिए जो चाहें आप करें, प्यार करना बहुत आसान होता है। दिल का किसी को पसंद करना बस कोई दिल में यूँ घर कर जाए, उनकी बातें, उनके बारे में हमेशा सोच सकते हैं हम लोग। हमें किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी का रुतबा अच्छा लगता है, किसी का बस पास रहना, अच्छा महसूस करना हमें अच्छा लगता है कि वो बस हमारे आस पास रहें तो दिल खुश रहता है। जैसे उनके साथ रहने से वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है, कट जाता है। आप किसी को प्यार करें, प्यार करना एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत आम बात है। कहते हैं लोग कि बड़ी ख़ास बात है, लेकिन मुझे लगता है बहुत आम बात है। दिल किसी को भी चाह सकता है, लेकिन उस दिल को कोई प्यार करे, यानी कि आप किसी को प्यार कर सकते हैं लेकिन आपको कोई प्यार करे, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे ऐसे लगता है कि प्यार करना आसान है, लेकिन कोई आपको प्यार करे उतनी ही शिद्दत से, ये थोड़ा मुश्किल काम मुझे ऐसे लगता है। और एक दूसरी बात ये भी है कि आप किसी से प्यार करवा नहीं सकते अपने आप को। यू कांट मेक समवन फॉल इन लव विद यू। और होता ऐसा है कि ये बात समझते समझते हमें बहुत टाइम लग जाता है कि हम किसी से प्यार नहीं करवा सकते अपने लिए, राइट? ये करते करते काफ़ी जब देर हो जाती है तब हमें ये बात समझ में आती है। दिल यही चाहता है कि कोई हमारे दिल का हाल पूछे, हमारा दिन कैसा बीता था ये पूछे, कुछ प्लान करें हमारे लिए। कोई तो दुनिया जहान में एक ऐसा शख्स हो जिसे हमारी परवाह हो और जिसके लिए जो हमारे ये आंसू हैं ये मोती की तरह हों, और चाहते हैं कि ऐसा कोई हो इंसान जो दुनिया में हमारे लिए लड़ जाए, हमसे भिड़ जाए दुनिया में, किसी से भी हमारे लिए। लेकिन असलियत ये है कि ऐसे कुछ होता नहीं है, ये सब मिलता नहीं है, राइट? और हम किसी को पसंद ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कोई हमें पसंद करे और जिस इंसान को हम पसंद कर रहे हैं वही इंसान हमें पसंद करे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और भी बात है कि जब हम किसी के साथ प्यार कर रहे होते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करें और इन रिटर्न वी ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम। हमें ये लगता है कि हम जैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं और हम उनके साथ जैसे प्यार कर रहे हैं, उन्हें भी हमारे साथ वैसे ही प्यार करना चाहिए, कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए। सौदा कह सकते हैं इसको, मोल तोल कह सकते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम नहीं हम करते आजकल के ज़माने में, और हम वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अनकंडीशनल लव हम बोलते हैं लेकिन वहाँ पे भी कंडीशंस अप्लाई रहती हैं, क्योंकि दिल के किसी कोने में हम चाहते हैं कि कोई और भी हमारा इंतज़ार करे, कोई हमसे भी बात करे, कोई हमारी परवाह करे, चिंता करे, पूछे कि तुम्हें क्या गम है, क्या परेशानी है, मसला क्या है, दिल के साथ चल क्या रहा है। कोई तो हो जो ये सोचे, ये जाने, ये पूछे कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, तुम क्या चाहते हो। पर ये कोई नई बात मैं बता नहीं रही हूँ आपको, ये बहुत पुरानी, सदियों की पुरानी समस्या है, प्रॉब्लम है। होता नहीं है ना ऐसा लाइफ में। वही बात घूम फिर के आ जाती है कि हम किसी से प्यार करें ये आसान है, लेकिन कोई हमसे प्यार करे ये होना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है कि ये आप करवा नहीं सकते हो, हो जाता है खुद ब खुद। कोई करे प्यार तो ठीक है, करवा तो नहीं सकते ना, लेकिन दिल तो मानता नहीं। तभी तो कमबख्त इश्क है ना, कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ बदलें, कुछ एडजस्टमेंट करें लाइफ में, और ये चाहते हैं कि अगर हम किसी के लिए एक पूरा का पूरा पुल है, ब्रिज है पार करना चाहते हो, तो कम से कम दो कदम तो वो बंदा भी आगे हमारे लिए ले ले। लेकिन तकलीफ़ होती है ना कि जब हम तो पूरा रास्ता तय करने के लिए तैयार हैं लेकिन अगला बंदा दो कदम भी नहीं ले रहा, तो तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, क्योंकि
कोई सभी हम सभी लोग ये चाहते हैं ना, दिल के किसी भी कोने में भले हम कुछ भी बोलें, चाहते तो हम यही है ना कि हमें प्यार मिले, कोई भी हमें चाहे, कोई हमें भी चाहे, राइट। दुनिया का मैं जैसे कि बोला कि सबसे मुश्किल काम नहीं, नामुमकिन काम है कि किसी को अपने प्रति प्यार महसूस करवाना। हो ही नहीं सकता, आप कितनी लाख कोशिशें करवा लें, आप किसी को प्यार नहीं करवा सकते, आप किसी को प्यार में पढ़वा नहीं सकते। वो एक वो जिन की कहानी भी अगर याद है, तो जिन बोलता है कि मैं तुम्हारे सब जो इच्छाएं हैं वो पूरी करूंगा, लेकिन ये जो तीन इच्छाएं उसने बोली थी कि किसी को मार के जिंदा नहीं कर सकते, और किसी के लिए मन में प्यार नहीं जगा सकते, और एक और कुछ और था, तो वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप पसंद आ सकते हैं किसी को, आप किसी को पसंद करवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आपके बारे में लोगों को पसंद आ सकती हैं, लेकिन प्यार, प्यार बहुत मुश्किल है कि प्यार करवाना बहुत मुश्किल है। तो इसी बात पे आपको सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत सा गाना। ये मैंने प्रोग्राम बना रही थी तब मैंने ये गाना सुना, पहली बार सुना, बड़ी नई फिल्म का गाना है, दिस स्टक इन माई हेड। मैं कितनी बार ये सुन चुकी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ज़रूर ये गाना सुनें और बताएं कैसा लगा।

तुम पे तो हम मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गाना, मुझे लगता है कि मेरे आज के टॉपिक के लिए बहुत ही एप्ट गाना है ये, फ्रॉम द मूवी बोले चूड़ियाँ। और आगे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आज कि प्यार करना कितना आसान है, लेकिन आप के प्रति, आपके तरफ किसी का प्यार होना और आपको प्यार मिलना कितना मुश्किल है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप किसी को प्यार करवा नहीं सकते हैं। और अगर हम देखें ऐसे लाइफ में, तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अगर आप किसी का पसंद का सब कुछ करें जो जैसा अगला चाहता है आपको, बिल्कुल अगर आप वैसा बन जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए उनके मन में जगह बन जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा स्कैम है, ये ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर आपके खूबसूरत लगने पर और या फिर आपके बदल, अपने आप को बदल लेने की वजह से कोई आपको प्यार करने लगता है या आपको लगता है कि आपकी अहमियत बढ़ गई है थोड़ी ज़्यादा, तो अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में जितने भी खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग दुनिया में भरे पड़े, राइट, तो फिर उनकी ज़िंदगी में तो बहुत प्यारी प्यार, बेशुमार प्यारी भरा होता। पर ऐसे होता नहीं ना, क्योंकि खूबसूरती की वजह से लोग आपको नोटिस कर सकते हैं, वो आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, नोटिस जैसे कि मैंने बोला कि कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार नहीं हो सकता कि अगर आप बहुत खूबसूरत हैं, अपने आप को बहुत खूबसूरत आपने बना लिया, दूसरे की पसंद के हिसाब से बना लिया, तो कोई आपको प्यार करने लगेगा, क्योंकि ब्यूटी अट्रैक्ट्स अटेंशन, अट्रैक्शन, ब्यूटी डजंट अट्रैक्ट लव, प्यार नहीं मिलता खूबसूरती से। और अगर अपने आप को बदल लेने की वजह से हमें कुछ मिलता है, तो वो अप्रिसिएशन मिल सकता है, लोग तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ ये आपने अच्छा किया अपने बारे में, अपना फिगर बहुत अच्छा मेंटेन कर लिया है, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं वगैरह वगैरह, या कुछ आदतें आपने चेंज कर ली हैं, तो नोटिस करेंगे लोग, तारीफ़ें हो जाएंगी, लेकिन क्या प्यार मिलेगा? और मैं ये बात कर रही हूँ सच्चे वाले प्यार की, ऐसे जो अफेयर्स होते रहते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, सच्चा वाला प्यार क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। और इससे तो बेहतर है कि ख़ुद को बदलना ही है, और किसी का प्यार पाने की वजह से या उसके लिए बदलना है, तो इससे तो है कि आप बदलें और आप ख़ुद से प्यार करें। सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव, कहते हैं ना, कहते हैं कि किसी को प्यार करने से पहले ख़ुद को प्यार करना सीखो। जब आप ख़ुद की वैल्यू करोगे, तो आपको प्यार की, मोहब्बत की, इश्क की वैल्यू, उसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो सेल्फ लव में क्या बुराई है? थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन अगर आप सोच के देखें तो मतलब आप किसी के लिए अपने आप को बदलो, नहीं इसलिए नहीं कि वो आपके प्यार में पड़ जाए या फिर उनका प्यार पाने के लिए। अगर खुद ब खुद प्यार में हो रहा है, अगर आप खुद ब खुद कुछ करना चाहते हैं अगले इंसान के लिए, विलिंगली नेचुरली अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप करें उनके लिए, अपने पर्सनैलिटी से डिफरेंट हो के कुछ बदलाव है, तो वो डिफरेंट है, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन बदलना था क्योंकि प्यार मिले, वो गलत है, वो प्यार की सेहत के लिए, दिल की सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है। बात ये कर रही हूँ मैं कि कितना भी आप बदलें, कितने खूबसूरत हैं या क्या है चेंजेस लाएं, इन सब चीज़ों से प्यार नहीं होता। और अगर वो लगता भी है आपको कुछ कम समय के लिए कि प्यार हो गया, तो वो बहुत ऐसे मोमेंटरली होता है, वो तो प्यार होता नहीं ना, जो ख़त्म हो जाए वो प्यार ही कैसा, राइट। वो प्यार तो हमेशा के लिए होता है, तो सोचिए इसके बारे में कि क्या बात मैं कर रही हूँ। और सुनिए ये दो बहुत ही खूबसूरत से गाने।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं आज हम कमबख्त इश्क के बारे में, प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे प्यार करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन किसी से प्यार करवाना नामुमकिन है। किसी का आपको प्यार करना कितना ही मुश्किल है, मगर हमने आसपास ऐसी अपनी बहुत सारी अमेजिंग लव स्टोरीज़ देखी हैं, बहुत सारी ऐसे मोहब्बतें देखी हैं। कितने लोग हैं हमारे आसपास जिनको बहुत प्यार हासिल हुआ है, प्यार मिला है, और हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार इसको प्यार कैसे मिल गया, इसको भी प्यार हो गया, राइट? तो दिल एकदम से ऐसे सोचने लगता है कि इसको कैसे मिल गया, और हम फिर ना वजह ढूंढने लगते हैं कि कारण ढूंढने लगते हैं कि क्यों मिला प्यार, क्या वजह क्या हो सकती है। हो सकता है कि जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि कोई बहुत खूबसूरत है, उसकी वजह से किसी को प्यार मिल गया होगा, किसी के पावर से किसी को प्यार मिल गया की वजह से किसी ने प्यार किया होगा, किसी के नाम की वजह से किसी ने प्यार किया होगा, या फिर कोई भी वजह हो सकती है किसी को प्यार करने की। लेकिन कुछ भी बोलो, चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे कारण कुछ भी हो, जब प्यार मिलता है तो कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत खुशी मिलती है। और हम सभी चाहते हैं कि हम सभी प्यार के भूखे, हम सभी चाहते हैं कि प्यार मिले, मगर इस जनरेशन की जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है। प्यार का मामला थोड़ा सा तंग होता है यहाँ पे, जहाँ पे 15 सेकेंड की रील को लोग 3-4 सेकेंड का वक्त देते हैं, 3-4 सेकेंड का अटेंशन देते हैं, तो 2 सेकेंड का अटेंशन क्या दिल को मिल सकता है? आजकल की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वक्त ही कहाँ है लोगों के पास, समय नहीं है ना। कहाँ, कौन, किसके लिए, क्यों, क्या मिल रहा है, कोई क्यों करे ना। लोग अपने आप के साथ में नहीं रहते, किसी और के साथ कैसे रह पाएंगे, सोचिए इस बात को। और ऐसा नहीं है कि मैं जनरेशन, नई जनरेशन की बात कर रही हूँ तो पुरानी जनरेशन के लोग हैं या जो हैं सब बड़े परफेक्ट थे, परफेक्ट लव स्टोरीज़ रही हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, और बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी खामियाँ, कमियाँ, खराबियाँ हैं, पर इंसान है हम लोग भी। हम भी सोचते हैं कि क्या कभी कोई हमारे लिए भी जागेगा, कोई हमारे लिए भी कुछ करेगा, क्या हमारे लिए भी कोई फ़ोन का इंतज़ार करेगा, क्या कभी कोई हमारे बर्थडे पे कुछ सरप्राइज़ प्लान करेगा, क्या दिन के अंत में कोई पूछेगा कि तुम्हारा दिन कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा दिन, क्या कभी कोई बिना पूछे, बिना हमारे कहे ये आँखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं ये जान पाएगा। ये सब हम ही चाहते, सब हमारे मन की बातें, सब ये मैं नहीं, आप नहीं, सब जो लोग भी सुन रहे हैं, सब सबके दिल में यही बातें चल रही होती हैं, सबकी इच्छाएं एक ही हैं। और वक्त की कमी बोलें या जो भी बोलें, जहाँ या किस्मत बोलें या क्या बोलें, कि जहाँ हमें चाहिए होता है प्यार, वहाँ पे हमें मिलता नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको प्यार मिल पाना और अगर उसी एक इंसान से प्यार मिलने की बात हो जैसे कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर तो अगर वो मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, तो उसको खुशकिस्मती कह सकते हैं, ऐसे ऊपर वाले का आशीर्वाद बोल सकते हैं, नेमत बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता कितना, कितने परसेंट होता है ऐसा कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं हमें वहाँ से प्यार मिल जाए? तो प्यार मिलना बहुत बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे पता ही है कि ये जो गाने मैं सुना रही हूँ आपको, ये गाने कैसे लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये टॉपिक से बहुत इत्तेफाक रखते हैं, बहुत मिलते जुलते गाने हैं, बहुत अच्छे लग रहे होंगे गाने आप लोगों को भी। बहुत ही सुंदर सा मैं अगला ये वाला गाना लेके आई हूँ आपके लिए। पुरानी मूवी है, 1985 की मूवी गुलामी, उसका गाना सुनाती हूँ मैं आपको, और सुनिए और बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसे लग रहा है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो। बात कर रहे हैं हम आज कमबख्त, कमबख्त इश्क प्यार के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मसला क्या है इसका, क्या चल क्या रहा है इसके दिमाग में, प्यार के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहता क्या है। अगर मैं थोड़े पुराने समय की, थोड़े से पुराने समय की बात करूं तो शायद ये बात बहुत सारे लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। सच है ये बात कि बहुत से लोग जिनकी शादियों को बहुत बहुत साल हो जाते हैं, 20, 25, 30, 35 साल हो गए शादी के, आप एक कमरे में एक बिस्तर पे सोते हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन रिश्ते निभा रहे हैं वो, लेकिन क्या उनके बीच में प्यार है, क्या वो प्यार करते एक दूसरे से, या वो रिश्ते निभा रहे हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है, ड्यूटी कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं साथ में रह के, फ़र्ज निभा रहे हैं अपने। फिर जब वो अपने अगले जनरेशन के बच्चों को देखते हैं कि उन्हें प्यार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें प्यार क्यों नहीं मिला, कि अब हम अपनी जनरेशन की बात करें, आगे नई जनरेशन, नई पीढ़ी की बात करें, तो उन्हें पता नहीं है, उन्हें प्यार पता नहीं है, और उन्हें समझ नहीं आता कि प्यार को रिस्पॉन्ड कैसे करें, कैसे उसका कैसे उसको समझें, या क्या चीज़ है, समझ में नहीं आता ना कि उनको कि इसका जवाब कैसे देना है, कैसे रिएक्ट करना है प्यार के ऊपर में। और ये पूरी की पूरी एक जनरेशन है, शायद मुझे लगता है उसको प्यार के मायने नहीं पता है, वो फटाफट वाले अफेयर, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल दैट, मुझे वो समझ में नहीं आते। पर शायद उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद बचपन में देखा है कि रिश्ते संभालना क्या है और जिम्मेदारियां संभालना उन्होंने देखा है और सीखा है, उन्होंने शायद बचपन में से प्यार देखा ही नहीं। और अगर हम देखें तो पुराने ज़माने में हमारी माओं के लिए, माँ के लिए प्यार क्या था, उनके लिए था कि हमारी खुशी और हमारी अच्छी सेहत, और पापा के लिए खुशी है कि हम अच्छे से पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, हमने प्यार का ये रूप देखा है। और तो जो जनरेशन है वो उसको प्यार का यही मतलब समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है। और जो इतने सालों से साथ रहने वाले पति पत्नी, माँ बाप, उनका साथ में रहते रहते उन्हें इतना काम करने की, जिम्मेदारियों की इतनी आदत हो जाती है कि उस चक्कर में शायद उनका प्यार कहीं खो जाता है। और क्या बोलूँ कि आजकल की जनरेशन के बारे में, अगर मैं ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रही हूँ, पहले के ज़माने की देख रही हूँ और अभी की मैं बात कर रही हूँ, तो आजकल की जनरेशन बहुत सब कुछ फटाफट, जल्दी जल्दी करना चाहती है, फटाफट टाइम ही नहीं है। जैसे कि मैं रील की बात करी थी कि रील देखने का टाइम नहीं है, फटाफट स्क्रॉल करते जा रहे हैं, भागती दौड़ती ज़िंदगी वो कुछ डिफरेंट ही है। ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, सब कुछ फटाफट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, ट्रैवल करना पसंद है कि कहीं कहीं चले जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं कि जाके शायद उन्हें कोई ढूंढे, और या फिर अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, या फिर कुछ खोया है, खुद को कुछ ढूंढना चाहते हैं। बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, मुझे ऐसे लगता है। और घुमा फिरा के, लेकिन चाहे वो नई जनरेशन की बात करूँ मैं या पुरानी जनरेशन की बात करूँ, घुमा फिरा के दिल तो दिल है, और दिल चाहता है कि उसे कोई प्यार करे, उसे चाहे, उसे कोई समझे। और ये लेकिन ये कश्मकश हमेशा बनी रहती है किसी भी जनरेशन की हो, कि हम किसी को चाह रहे हैं तो क्या वो हमें चाह रहा है, पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। पसंद करना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पसंद तो आप बहुत लोगों को आ सकते हो, और आप बहुत लोगों को और बहुत चीज़ों को पसंद कर सकते हो, लेकिन वो जो प्यार है, वो जो असली वाला प्यार होता है, जिसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कि चाँद पर तो आप जा सकते हो, चाँद पर जा सकते हैं, जहाज़ उड़ा सकते हैं, पर किसी को अपने प्यार में नहीं डाल सकते। मैं घूम फिर के वही बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात आपके दिमाग में डाल देना चाहती हूँ। और सुनिए ये बहुत ही खूबसूरत से दो गाने, बहुत बहुत प्यारे गाने हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।

आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट शो विद मी शालिनी। बात कर रही हूँ आज मैं प्यार के बारे में बात कर रही हूँ। प्यार वो है कि जो जब कोई इंसान आपकी गलतियों से, आपकी खामियों से, आपकी कमियों से भी प्यार करे। पसंद करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं, मगर प्यार, प्यार कुछ अलग है, उसका उसकी कैटेगरी अलग होती है। आपके आपने कोई मेकअप किया, आप तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपके बालों में तेल लगा हुआ, आपने नहाया है कि नहीं नहाया है, शक्ल सूरत बदसूरती खूबसूरती, इससे प्यार का कोई लेना देना होता नहीं है। खूबसूरती के साथ प्यार का कोई लेना नहीं है, अच्छाई के साथ प्यार का कोई लेना देना नहीं है, बड़े बैंक बैलेंस के साथ, तो परफेक्शनिस्ट होने से, इन सब से प्यार से कुछ संबंध होता नहीं है असल में कुछ भी। अगर सब कुछ बहुत खूबसूरत कोई इंसान हो और बहुत ही परफेक्टली अपनी सारी ड्यूटीज़ निभा रहा है और सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, तो फिर अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे तो प्यार मिल जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो परफेक्शनिस्ट हैं और सब कुछ सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से उठते हैं, एकदम किताबी तरीके से जो बताया गया है उनका बिहेवियर और उनका काम सब अप टू डेट, सब परफेक्ट रहता है। लेकिन ऐसा हो तो उन्हें भी प्यार मिला होता, मिलना चाहिए सारे लोगों को जो ठीक तरीके से करते हैं काम, मगर ऐसे नहीं होता ना। बिकॉज आई थिंक दैट लव इज़ नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग राइट, लव इज़ व्हेन समवन एक्सेप्ट्स ऑल योर रॉन्ग्स एंड ऑल एंड स्टिल एक्सेप्टिंग योर रॉन्ग्स एंड बैड थिंग्स टिल दे फॉल इन लव विद यू एंड दे फॉल इन लव विद योर इम्परफेक्शंस। मुझे लगता है कि वो असल में सही वाला प्यार है। असल प्यार की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ जो आजकल हमें हर जगह दिखाई पड़ जाता है आसपास। ये मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपकी आँखों से आंसू जो टपक रहे हैं ये सामने वाले को पता हो, बिना बताए बिना कहे उसे पता हो कि आप क्यों उदास हैं। ये वो वाला प्यार है जो मणिरत्नम की जो मूवी है दिल से, उसमें मनीषा कोरेला बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होती हैं और शाहरुख खान फिर भी उन्हें बचाने जाते हैं, फिर भी उन्हें मदद करते हैं, फिर भी उसको प्यार करते हैं। दिल से मूवी में ही मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ। और ऐसे वाले प्यार की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपकी गलती के साथ भी उसे प्यार हो और आप उनकी गलती के साथ आप जीना चाहते हो, मैं उस वाले प्यार की बात कर रही हूँ। उनके गलत को आप स्वीकार करें, क्योंकि प्यार में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, प्यार में सब अच्छा ही होता है। अल्फाजों के दीवाने तो आपको बहुत मिलेंगे, प्यार उससे करो जो कि आपकी खामोशी को समझ सके।

मौसम गुजरते। दिल से रे, फ्रॉम द मूवी दिल से। प्यार की ये दौलत जिनके पास में है, वो कितने खुश नसीब और खुश किस्मत लोग हैं ना। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा ज़िंदगी में, इस लाइफ में सही किया होगा, नहीं तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा उन्होंने अच्छा, इसीलिए ऊपर वाले ने उनको ये सौगात प्यार की दी कि जिससे वो प्यार करते हैं उनको उसी से ही वापस में वो प्यार मिल रहा है, और उनके झोली में ये खुशियाँ डाल दी ऊपर वाले ने। और बहुत सारे लोग हैं जो बस इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ज़िंदगी में कि कब ये ठप्पा लगेगा प्यार के उनके ऊपर, कब उनको तो प्यार है जिनसे, उनका प्यार भी उन्हें वापस मिलेगा। तो अगर रिश्ता अगर दिल से है तो मन कभी नहीं भरता, बस ये बोलना चाहूँगी। और अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं, ये एपिसोड पसंद आ रहा है, तो मुझे और रेडियो को ज़रूर फॉलो करें, ताकि नेक्स्ट वेंसडे हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम में आप मेरी और अच्छी बातों को मिस ना कर सकें। तो रेडियो को, शुद्ध देसी रेडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें। मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं शालिनी के नाम से, और इंस्टाग्राम पर RJ के नाम से फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, और ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। मैं सुनाती हूँ ये आपको आखिरी वाला गाना और लेती हूँ अलविदा इस प्रोग्राम से। और आप सुनिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए शुद्ध देसी रेडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ढूंढने से नहीं मिलते रूह से चाहने वाले, खुदा खुद ढूंढ के देता है वो शख्स जो दिल को सुकून दे। हाय, आप सुन रहे हैं हार्ट टू हार्ट विद मी शालिनी, ओनली ऑन शुद्ध देसी रेडियो।

सुन रहे हैं नंबर वन ऑनलाइन रेडियो स्टेशन शुद्ध देसी रेडियो। सुनते रहिए एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम दोस्तों। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे एंडी और इस प्रोग्राम में आपके लिए आपके फरमाइश के गाने बजेंगे। बट दिस इज अ वेरी स्पेशल डे। ये ऐसा दिन है वैलेंटाइंस डे का जहाँ पे आपके जो रिक्वेस्टेड गाने हैं वो तो बजेंगे ही बजेंगे, लेकिन ये जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे जहाँ पे पूरी दुनिया एक्चुअली आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में होड़ में होती है हर एक की, यू नो, पोस्ट की कौन बढ़िया सी पोस्ट डालेगा सोशल मीडिया पे, शोइंग लव एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ, यू नो, नाइन इयर्स दैट गो विद दिस वैलेंटाइंस डे। लेकिन विद दैट बीइंग सेड, फॉर ऑल दोज, यू नो, there's always, you know, people who are going to be, you know, loving whosoever they love all 365 or 366 days of a year, depending on whether it's leap year or not. Unke liye ye jo din hota hai Valentine's Day ka, I think for them it is very difficult to, you know, just because other people are doing, you know, apna love pyar jata rahe hain, तो दे फील लिटल काइंड ऑफ आउट ऑफ द वे, बिकॉज उनके लिए तो मतलब प्यार जताना इज प्रेटी मच एवरी डे वाला अफेयर होता है। तो विद दैट बीइंग सेड, आज के इस प्रोग्राम में जो पहला वाला गाना है, ये गाना हमारे हर वैलेंटाइन डे की रिक्वेस्ट में हमेशा आता है और ये गाना इतनी बार बजा है, लेकिन ये आज का स्पेशल गाना है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे। और जिन्होंने भी गाना रिक्वेस्ट किया है उनके नाम आपको बताएंगे गाने के बाद में, बट फॉर नाउ यू गो अहेड एंड लिसन टू दिस फैबुलस सॉन्ग। This is kind of, you know, anthem that plays pretty much on every Valentine's Day on Aapki Farmaish on Shuddh Desi Radio. Here you go.